खजी युज ब्याहर गले चोलो मीना वालो था। अच्छा जी कॉल बहन से मिलो अल्लाह की इंतजार के वही मैसेजेस बिल्कुल कवले शेप हो 0345 933 2580 यानी कि ऑफिशियल नंबर बने बिल्कुल मैसेज कवले शेप और बल नंबर दे 0331 5362 340।

अच्छा जी, आपके मैसेजेस प्रोग्राम में आ चुके हैं, उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। थोड़ा सा आपने वेट करना है, 12 बजे के बाद आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल करता हूं। आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर, और हमारा ऑफिशियल नंबर है 0345-933-2580, 0345-933-2580। और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0331-5263-340, 0331-5265-340।

अच्छा जी, आपको एक क्या कहते हैं कि अफसोसनाक खबर से आगाह करता चलूं। पेशावर में एक स्कूल की छत गिर गई है, जिसकी वजह से 17 बच्चे और एक खातून टीचर जाबहक हो चुके हैं। सुबाई दरलहकूमत पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 17 बच्चे और एक खातून टीचर जाबहक हो गए हैं। मौके पर इमदादी कार्रवाईयों में मसरूफ रेस्क्यू हुकाम ने मुतअद्दिद बच्चों के मलबे तले दबे होने का खतरा भी जाहिर किया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबे बच्चों को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि जख्मी बच्चों और टीचर्स को पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और अस्पताल तर्जुमान ने 17 बच्चों और एक खातून टीचर के जाबहक होने की तस्दीक की है। इनके मुताबिक अब तक 30 तुलबा और असातिज़ा जख्मी हालत में अस्पताल पहुंच चुके हैं। और रेस्क्यू हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने की वजह से अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। और मशीर इतलात समर हारून बिलोर ने दीर कॉलोनी पेशावर में निजी स्कूल की छत गिरने के वाकये पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों के दुख और गम में बराबर के शरीक हैं।

और दूसरी जानिब ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बागर कलिवाफ ने भी अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ मजाहमत जारी रखने का ये ऐलान किया है कि तेहरान अपने मुतालिबात मनवाए बगैर पीछे नहीं हटेगा, ताहम वो न गैर मुइन्ना मुद्दत तक जंग वहां है और न ही तवील मुज़ाकरात में उलझना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गलीवाफ ने कहा है कि ईरान का मकसद ऐसा पायदार दिफाई तवाज़ुन कायम करना है जो मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत की रोकथाम कर सके।

पाकर कलीवाफ ने अमेरिका के दबाव और मुकर्रर डेडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलतें गुजर चुकी हैं, जिनमें ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की कोशिशें भी शामिल हैं, लेकिन इन इकदाम के बावजूद ईरानी निजाम बदस्तूर काम कर रहा है।

अच्छा जी, इसके अलावा अपनी सरजमीन सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये कहना है इराकी वजीर आजम का। इराकी वजीर आजम ने रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होशियों के हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए यकीन दहानी कराई है कि इराक अपनी सरजमीन को सऊदी अरब या खित्ते की दीगर ममालिक की सलामती के लिए खतरा बनने वाले हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा।

अच्छा जी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बाद 12 अजला के लिए एडिशनल आईजी पुलिस तैनात कर दिया गया है। सो ग्रेड 21 यानी 21 के ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर सैयद अब्बास अहसन को खैबर पख्तूनख्वा के 12 जिला के लिए एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात कर दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक सैयद अब्बास अहसन इससे कबल एडिशनल आईजी हेडक्वार्टर्स के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तो नई तैनाती के बाद उन्हें इन 12 अजला में पुलिस के मामलात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सो बिल्कुल, इन अजला में जमशुदा कबायली इलाके बाजवड़, मुमन, खैबर, कुर्रम, औरकजई, शिमाली वजीरस्तान, जनूबी वजीरस्तान अपर और जनूबी वजीरस्तान लोअर शामिल हैं, जबकि बंदोबस्ती अजला डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नो और लकी मरवत भी इस दायरे कार में आते हैं। याद रहे कि विफाकी हुकूमत इससे कबल इन 12 अजला के लिए मोहम्मद यहिया अहमदजदा को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर चुकी है। जराए के मुताबिक सैयद अब्बास अहसन और मोहम्मद यहिया अहमदजदा बराह रास्त विफाकी हुकूमत को जवाबदेह होंगे, जबकि मुतालिका अजला में अमन अमान की बहाली और इंतजामी उमूर की निगरानी इनके सुपुर्द की गई है।

0: चले टाइम भी कम है, यानी कि न्यूज हेडलाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बाकी है। 12 बजे न्यूज हेडलाइन भी होगा और 12 बजे के बाद जब मैं आऊंगा सो आपके मैसेजेस मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सो अब प्रोग्राम में चलते हैं कॉल्स की जाने, कॉल शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। सो खबर क्यों किम से ना। हेलो हेलो खजी आवाज से लोड ऑन आवाज से ड्रॉप शो किसी कल बने चे बलसो को दिखे ना दे। अस्सलाम वालेकुम खजी। बिल्कुल तो से कॉल ड्रॉप शो नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम की शामिल भी। अस्सलाम वालेकुम। सुख खबर के वे किम जना
1: आईना खबर को करकना
0: आईना खबर के करकना आईना सरंगी शाय
1: दो शाय भाई जान तो सरंगी चक्रत वाय छे।
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खैर खरी तो से सही कना खजी प्रोग्राम और वे
1: उस ने वाला गवाला सेना को किसी करोड़ होते में लगा में तो तरह के वाला गवाला।
0: अच्छा वो से वाला को सही सही बात बात जी कल दे हम से रेडियो वाला के वाला डेरा मने ना आईना प्रोग्राम की कॉल के बोली सिर्फ सुमन टपोती थी बाबा न्यूज हेडलाइन टाइम हम ही देने लवा सब अवेल होड़े प्रोग्राम के बोला सही था ठीक शुआ। वालेकुम अस्सलाम डेरा मरन यो जहान मरन को कॉल को बोले खजी नो दस अंदर और भी करना ब्याखी ना बाद भी न्यूज हेडलाइंस न्यूज हेडलाइन ना बाद भी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ना बाद भी आरसी प्रोग्राम बा 1 बजे पर रवानी।

अच्छा जी बिल्कुल, फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो। हाय भाई सुरंग, ये उम्मीद दाचे शुभ वे जो मन हाथ के रखना शो के चपे प्लेका नन सबो को मैसेज सामा मजा कर भी। मतलब फ्री दी गए ना। वैसे तारिक भाई पर नंबर बनी नहीं था, मतलब ऑफिशियल नंबर बने मैसेज सही दी आओ के नजर के सही दी खर्चा मन की। वैसे सुनाई जा मैसेज शामिल खा, थैंक यू सही डेरा मरे ना मन हा मैसेज के वाले लोया खजा डेरा डेरा मरे ना।

और इस वक्त जस्ट मैं नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको आपके प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो हम सब स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप संडे को ही किया करो प्रोग्राम, क्योंकि जितनी भी लिस्टनर हैं वो आपके बाकी दिनों की शो सुन सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट जस्ट संडे को ही सुन सकते हैं। सो मंडे का प्रोग्राम उसे दे दो जो संडे को कर रहा है, और आप वही संडे को ही कर लिया करो प्रोग्राम। अच्छा सही था, ठीक छोटे मना डेढ़ लेन थी मैसेज दिखे थे। डेरा मना ना फरिश्ता मैसेज करे बनगुल ना डेरा मना ना आओ सही ना, बस कोशिश करो चाहे इतवार पोरस भी यो जहान बनना दिन लो नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग शुद जीरा मजाको तारिक भाई। और अच्छा जी सॉन्ग फरमाइश से खड़ी दे रतपले का आई एम शायद फ्रॉम जुनूबी वजीरिस्तान। सही है डेरा मनना, जो कोशिश करो कमो तो दे वाला संदरा मखे तरोग ले बेवे जरूर रतपले को। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम तारिक सर, सरंग ये ठीक ये तारिक तारिक तो छे प्रोग्राम पो स्टार्ट किसे दा खबर वकी छे नन शुक छे फ्री एसएमएस राता कवले छे ब्याजे डेरा खुशोल छो। अच्छा जी फिर से मैसेज कर दे ढेर मरे ना यो जहान मनना तारिक भाई मेरा मैसेज पूरा शामिल करो। तारिक भाई मैं शो में फ्री एसएमएस के लिए इसलिए फ्री एसएमएस के लिए ज्यादा खुश होती हूँ कि मुझे 8583 पर मैसेज करने का तरीका नहीं आता। अच्छा भाई मैंने कई बार ट्राई की है 8583 पे मैसेज करने का, बट मेरा मैसेज सेंड नहीं होता। पहले मैं आर के लिख लेती हूँ, फिर थोड़ा स्पेस देती हूँ, फिर बात करके जब सेंड करती हूँ 8583 पर तो सेंड नहीं होता। हालांकि मेरे मोबाइल में पैकेज भी होता है, तो भाई ये क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकते है? वाह वाह वाह वाह वाह भाई पैकेज हमें पे के मैसेज कहो 8583 तक मैसेज न की रही दाब के बेला पैकेज हमें और सभी मैसेज न सेंड की रही नो असर तो देखो ने बख्त आगे तो खो मतलब पैसे बने टैक्स की रही। आगेता मतलब का तो पैकेज दे हैं पे मोबाइल के नो बैलेंस और बंदर सी सही दा छे मोबाइल के देखल बैलेंस भी नो मैसेज सेंड की जी माशाल्लाह वे छे दोनों ट्राई में ओकडो मैसेज न सेंड की जी वाह जी वाह जी डेरा मने ना बस केला द बैलेंस भी के ना मोबाइल के सिम के बैलेंस भी आगे ना बाद मैसेज सेंड की जी सही दा आर ए के इन कैपिटल गड खरोश ब आर ए के लिखे स्पेस خپل نوم خپل علاقے نوم مطلب چې کله سپیس ورکې کنه بیا نه بعد خپل نوم خپل علاقے نوم اوس میسج پیغام لیکي بیا نه بعد سینڈ کوي په 8583 باندې نو بالکل بده میسج سینڈ کیږي خو پیکیج سره د دې سره تعلق نشته چې موبایل کې د پیکیج وی یعنی مطلب د میسج کوم پیکیج دی کنه ا دې وی نو بیا وځو میسج سینڈ کو نه هغه خپل بیلنس وهي ډیره مننه فیزا میسج کوله। नेक्स्ट सलामोना तरखाना सरंग ये अनमोल दांगना शुख जादू नन्हो 15 या 20 बीजीएम चेंज का टूल खान की। अच्छा सही था वैसे संदर तपले का सही था जो कस मोत संदर मिलावशी बीच आज तबियाशी तरखान खफाशी ब्याह हो मीज खापा भी अल्लाह दे खुशहाल अल्लाह रा डेरा मनना अनमोल टांग ने मैसेज के बोले यो जहान मनना हनायाज मैसेज खड़े देखे ना कल यहाँ खड़े हुआ नो हनायाज डेरा मनना

अच्छा सुपर भाई, फॉर यू बाल्टी इतनी बारी के मैं उठा नहीं सकता, बाल्टी इतनी बारी के मैं उठा नहीं सकता, मेरा प्यारा, मेरा भाई इतना प्यारा है कि मैं सोचा नहीं सकता। वाह जी वाह, जबरदस्त जीरो मन ना। और सुपर भाई मेरे लिए स्पेशल दुआ करो, छुट्टिया में हाँ चक आज कॉलेज नहीं गई हूँ, बीमार हूँ। सही डेरा मनाना, बस अल्लाह तला रोख से हादर की डेरा डेरा मनाना के भी, और स्पेशल दुआ गाने उधर तक भी अल्लाह तला रोख से हादर की यो जहान मनाना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, जो साहिबा साहिबा द बहादुर हेलो ना शाहडेरा मनाना, तो यो जहान मनाना के भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई एम नूर एंड एनी फ्रॉम बन्नो, सलाम भाई कैसे हो, शो इज द बेस्ट प्ले खजी सही सॉन्ग फरमाइश थे करे दे डेरा मनाना, बस इंशाल्लाह कोशिश करूं चिदर तब लेख डेरा मनाना नूर एंड एनी मैसेज के वाले बनो ना लो ये खजी शीत बेड़े डेरा डेरा मनाना। नेक्स्ट सलाम तारिक भाई, अम्मी आपका शुक्रिया अदा कर रही है, मना है मैसेज करे। अच्छा सही दे डेरा मनाना, अम्मी सवेरे को नहीं दस अंदर बारे के यो चहान बनाना। हाँ जी देने लवा नेक्स्ट मैसेज।

अच्छा दादी कहती हैं कि ये लड़का वजीर नहीं है, अम्मी कहती हैं ये एजुकेटेड है। अच्छा जी अनएजुकेटेड वजीर का और स्टाइल होता है सर, आप की सिस्टर भी एजुकेटेड है ऐसे जो मैसेज खा जी डेरा मनाना सना हट क्यों डेरा बुराना ये लो या खजा छी जी डेरा मनाना है। नेक्स्ट सलाम तारिक भाई जो तो सिस्टर यो युवा ख्वाजा पठा फिर वो चवाशा पठा फिर चवा डोल देते फिर चवा सही तो डेरा मनाना मैसेज के बोले सिद्रा वन नहीं मैसेज कर दे यो जहान बनाना आई एम नूर एंड एनी फॉर यो मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहो। उस अच्छा जी सही डेरा मनाना थैंक यू नोर एंड एनी मैसेज को बोले डेरा डेरा मनाना अनमोल ब्याह मैसेज कर दे टांग ना माँ तरफ ना सबा और राफियता सलोम वेरकवा बस सलोम अदी कबुल खड़े भी डेरा मन्ना जी नेक्स हाय हाउ आर यू आई एम हिना फ्रीदी मैं दिस इज माय फर्स्ट सेमेस्टर सलाम टू राज भाई को हैंडसम गर्ल को हीरा खान डॉक्टर लैला और आफिया खान बाकी सब सिस्टर को सलाम सब सिस्टर एंड सब लिसनर को सलाम डेरा मनाना थैंक यू यो जहान मनाना हिना फ्रीदी मैसेज को बोले।

डेर मन न यो जहान बन न नाइल वजीर मैसेज खड़ा सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप तारिक खान? मैं हूँ जारा हटक। डेर मन न जारा हटे के बिल्कुल खैर खरियत यो जहान बन न। अच्छा जी, दास के बीच डोल तरफ तसी प्रोग्राम के डोल प्ले के भी जख जी बाबा बेगा कॉल करे हो बेगान मो ख्याल बल बेगा कॉल करे हो सर डोल खबर है कवला हो पैकेट मैंने हो मुकाना हो बता दे डोल वे बिल्कुल प्ले की सही था।

अच्छा जी सही देख रहा मानना जरा खटक मैसेज के बोले सलाम टू ऑल बेस्ट फ्रेंड यो जहान बनना जरा खटक खबर लिखे ली दो बेची डोल चुको हम दे चेंज के मतलब बल डोल वाला क्या है शाउस होबा सेर शुल्ला डोल मोवर वेदल रिहाम डॉक्टर रिहाम खान अगेन तारिक सर मैसेज में जरूर शामिल हुआ अच्छा शामिल को दादा शामिल हूँ गुरदा चा मैसेज शामिल हो तो टोल मैसेज शामिल हो ना डेरा मनना रिहाम खान मैसेज के बोले ओ दिन है लवा अनमोल मैसेज करे दे ब्याह तो जरा जिया तो मनना क्यों सॉन्ग फरमाइश ते करे दे

अच्छा सना घटक मेसेज करायचे डोला अच्छा जी शब्दिकेच सना शिवेला साईद खजे डेरा मनाना सना घटक लोया खजे हेलो हाय अंकल हाउ आर यू आई लाइक योर शो इट्स मी मरवा मोबाइल मैसेज कर दे डेरा मनाना यो जहान बनाना कि तो सौ कलमा वजीर ब्याह मैसेज कर डेरा मनाना अच्छा जी नाइला वजीर ब्याह मैसेज कर शाशा सही था ठीक छोड़े मनाना वाह वाह समा जबरदस्त मासा शो दो तरीका ना डेरा मना ना ओ चा मैसेज कर दे नोम देना दिली कलाई डेरा डेरा मना ना खजी टाइम देरा सर खत्म शो है सना हटक ब्याह मैसेज कर दे डेरा मना ना

0: Τώρα μαζί με τζι, τάρτο βγαίνει για πατασαπάρ, είτε τόσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πασαπάρ και έχουμε ίσμα washing powder, έχω χαστηθεί.
0: Ίσμα washing powder, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder, βορειβή. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γκυλεύε, χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder, βορειβόλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरबरो उदार तो या चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चि कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملویشی
1: تار کنا داو تو دا پا بانی گل شه اندرون لکی گیرد جانزه بگاله پشوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سارو درتا ملویشی

अच्छा हेना भाई चे लिसनिंग थ्रू नेट ऑन द वे मला यू आर नॉट इंक्लूडिंग माय एसएमएस दुमरा प सख रूटीन की बिजी जुवन की इम्पॉसिबल भी चीज प्रोग्राम चालम टाइम सब प्रोग्राम रेगुलर मैसेज को मैं बिल्कुल जमा मैसेज ने शामिल अभी उम्बारक शामिल में करो जावेदी हम शाही तंगी बाजवड़ नामा सर इकराम तमाम बाजवड़ के सोकम जमा आवाज उरी कहना हरियो बाजार के कैनायत के लिए दे खार बाजार दे सादिकाबाद दे और कदा देना इलावा नूर सुमरा इलाकी दी खोशा के टोलो के अलहमदुलिल्लाह प्रोडक्ट में लगी अपर दी रिहम साहिबाबाद वाड़ई खग्राम सुमरा बिक्रो वाला दी सुमरा कॉस्मेटिक स्टोर उन्हें दी मेडिकल स्टोर उन्हें दी तरा तेमरगरा की यू के ट्रेडर सुपर जिना प्लाजा के दे सुपर जिना प्लाजा के गुरगुरई चौक के सुपर जिना प्लाजा था और यू के ट्रेडर दे वर्के दर जमुन शमा प्रोडक्ट में लावेगी नूर दास राजी लखेरा तलाश दे चकदरा दा ताना दा बटखेला दा टोल बटखेला के जमुन शमा प्रोडक्ट में लावेगी टोल मरदान के मिलावेगी दरगई नवाला तर रशकैया पोरे काटलंग रोस्तम लुनखोड़ हथियान गढ़ खाकोट जलाला तखबई फजलेबाद के मेराज उस्ताज दे अल्लाह जुंदे लरी शाजिया डेरा मनाना हामिद दुआ सलाम रैली की वालेकुम सलाम हुई चिक्राम भाई हामिद इमा और ज द कोयले पे दुकान के देशमा प्रोडक्ट हरसो मा शाहवली ड्रम हाउस एंड कोयला पने मानी जमुंगा दुकान दे शागई रोड जोड़ वाबड़ा ऑफिस तमखामा सलाम अलैकुम इकराम भाई दारोड़े ना प्रिंस खबर को मैं इकराम भाई सिंह शुक्र दे खैमा सलाम अलैकुम इकराम भाई दुआ सलामी कबूल का जस्ता सो खोर सुंद सीमा जस्ता सो इश्मा फार्मूला क्रीम इस्तेमाल हो माशाल्लाह खिस्त रिजल्ट रा रखे रहे खदीने अलावा चिकम देनो अस्सलाम अलैकुम इकराम भाई ज गुलफाम यमा द दीरना दुआ सलाम रलीगी वालेकुम सलाम डेरा मनाना गुलफाम द दीरना सलाम अलैकुम मामू सिंह तबियत दिखा दे जहानिया खबरी को मा द पड़ांग गुना मामू जस्ता सु खामोश लिसनर यमा जमा सता सु प्रोडक्ट पकार दी खुद पैसो कमे दे नो बस मैं खला सद मर्ग दारू खोने दी अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई दुआ सलाम कबूल कई वालेकुम सलाम वही स्वीट भाई पखेर राले समय डेर रोजे बाद में दरता मैसेज कर दे डेर रोजे बाद दे आवाज और मा इश्मा फार्मूला क्रीम और इश्मा खून टूथ पाउडर जमा डेर ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट दी स्टाप पूरा कप नहीं के प्रोग्राम दे जमा डेर ज्यादा खोखी गई इकराम भाई और सारा खान दमरदान ना दा उगद मैसेज राली के ले दे डेरा मना ना सारा दमरदान ना खुशहाल हो से सलाम अलैकुम इकराम भाई वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम मार्केट वाला आई एम डेरा ज्यादा मनना पंदू जमजम मार्केट के वकास सर जमुग इश्मा प्रोडक्ट में लावी गई फायका फातिमा कैनात दिलंडी बना वाई चे भाई खबर डेरे खोखी खोगी दी उसका खबर जमा डेरे ज्यादा खोखी दी सलाम अलैकुम इकराम साहेब आप बहुत ही समझदार है इसी वजह से आपसे मोहब्बत है और मानते भी है हम इब्राहिम रगजा डेरा मना ना इब्राहिम रगजा सर जमुग इश्मा तमाम प्रोडक्ट लावेगी डबरा शेख उतार रोड बांधी इब्राहिम सोलर वाला दे इश्मा प्रोडक्ट और सर में लावेगी कुतुब जान द टांक न दुआ सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम उम्मे वलीद अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई सड़े मशी पखेर राले जहूं प्रोग्राम और मां इकराम भाई जमा नंबर को रजान सर सेफ का खान खजी सेफ में उम्मे वलीद सलाम अलैकुम इकराम भाई डॉक्टर अबू बकर फ्रॉम के एम सी भाई बहुत मुश्किल से टाइम मिला है आपको मैसेज करने के लिए डॉक्टर से अल्लाह जी कामयाब तख्ती नुसरती ननादिया राबिया दुआ सलाम अलैकुम अलीना इकरा तमे सलाम और वालेकुम अस्सलाम अदीन अलावा चिकन दे भाई ची एट्स मी सोनम शहजाद फ्रॉम अदीर मोंडा मोस्ट वेलकम हाजी इकराम भाई मनना खुशहाल होसी इकराम भाई जान आवाज दिखर के रेडियो पली का और लाइबा खानी दर सरमल गिरी मां भाई दगा खून पाउडर में डेर ज्याद दस्ता सो खुखदी और जेख पल अलहमदुल्ला चिकम जमुंगा दगा खून पाउडर दिनोदा इस्तेमाल हो अलहमदुल्ला पले में इस्तेमाल हो।

बेतरतीब सी हुई पड़ी है जिंदगी, दिल अलग, गम अलग, तुम अलग, हम अलग, और तेरे जाने के बाद ये समझ आया है, तेरे जाने के बाद ये समझ आया है, जहम अलग, दर्द अलग और मरहम अलग। और बात करनी थी तुझसे मगर क्या करे, बात करनी थी तुझसे मगर क्या करे, लफ्ज अलग और रह गई खामोशी अलग।

यो जलबिया यो जलबिया जी खुशोर इनको बिल्कुल 85-83 सिस्टम वाले बम तो से मैसेजेस खश मिले जी और माशाल्लाह रकीबो वेलकम टू द शो वही रकीब खटकिया यहां जी स्टाफ कलवट कश्मीरी बने रहा है कली के रोजाना

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

जी 10 साल का वो कहना चाहिए प्रोग्राम के रेसिपी शामिल वो और ब्यादा से पता नहीं लगी कहना चाहिए आराम से शामिल कुछ भी आइटम रोना खत्म हमने प्रोग्राम के बिल्कुल रेसिपी रोड़े दा और इस तरह नोट के ट्राई पे वके अच्छी तरह उदा तरीके से दगा रेसिपी अगा तो ट्राई कर लाए और बहाम उगर लाए गाना यकीनी यकीनी डेरा टेस्टी और ढेर मजेदार रेसिपी दो यानी दास है नमकीन प्याज चिकन कढ़ाही नमकीन प्याज चिकन चिकन कढ़ाही दा बसरंगे तो रेसिपी ढेर मीना वाला बुजी दा खड़ले खवी आ मखबले खड़ले दा ढेर मजा के भी और दे नूर चिकन कढ़ाई जी के मैं देखे ना अगेन इलाज के नुकसान का काम दी फायदे ज्योति जी ठीक लाइन सरंगे ज्योति दे गाबिया ता शाम अब सरंगी तो रिज जी दे दे पर बदास चलवा के खाना चिकन चिकन चरगे वाला वैसे जैसे दे और फर्मी चिकन शा देसी ना है फर्मी चिकन दा कढ़ाई चिरा ते और वो नोट कै जी सुख नोट कवल गोड़ी नोट कै चिरा बो सरंगे यानी अगस्पिना कढ़ाई चे सतवी आए पड़ले मदा तक अस्पिना कढ़ाई

0: 4, 3, 2, 1, 4.
1: RJ Shahid Khan.
2: खुश खबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश

समझ ना वो ननु तो से दे मुसीके ना हलश पान देखना उसके उधर तरह दमा हशाय अच्छा लश डरे खबरे वो देखार हम ही बच बताओ तो तुटाई डायरेक्ट फायदा मिला ही बताओ डायरेक्ट फायदा रची

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: ओहो ताचे हम ना उम्मीद अगर जाए देखो डॉक्टर पुतलाश की नुबिया इंतजार द कुमे खबर दे उमनम राशि मजीद खान होम्योपैथिक ता आओ दखपलो बीमारियानो इलाज के मजीद खान होम्योपैथिक क्लिनिक की ताचे द मेदे हर किस्म बीमारियानो आसाबी बीमारिया ने जोड़ो दर्दुना दमला दर्द अरकुन्निसा द गुर्दे काने द त्रिखी काने अरसोलई बवासीर बगैर प्रश्न यो ख इलाज कवले से औलाद द चा निश्ता औलाद हम द अल्लाह ताला लुई नेमत है नो बिल्कुल रात ले से इलाज कवले से एड्रेस सुंदर सरवाख ले जेल चौक अदालत सर बिल्कुल निजदे अरसलान मार्केट करक कॉन्टेक्ट नंबर 03-44-20-45-545 कॉल ओके

हो जी बिल्कुल फेसबुक तला रे उस मलकरी चिकुंदी कना ढेर एक्टिव दी कना ढेर एक्टिव हमें तो जर जर फुल कमेंट चिकुंदी आ शरीक है और दिल्ली वाला चिकुंदी हम बस स्टडी शेवी दी कना ओबो बंदोबस्त चिकुंदा आवे तो कहे हो बिल्कुल ओबक पल हम वत शहीद

संभाल के लोप मिले लिबास दिन जनीने जमी वापस जरीने मूर्त उब बना कई दया खबर तजी शेर कई बार तजी कबर कुछ न कोसरा गुजर तजी शेर कई बार